0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
2: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं, हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
6: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। 100.1 FM, your location for maximum music.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: 100.1 FM, your location for maximum music.
1: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: वन स्टेशन 100 FM।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: One station, 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगे।
2: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
3: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
3: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0001 पर।
7: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम के मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOS को जल्द पहचाने, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाए। जुमेरात 3 सितंबर, दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: वन स्टेशन 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ। अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: location for maximum music.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, राहिब यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, across Pakistan. This is FM 100.

0: स्टोन पहनने से पहले किसी जेमोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही स्टोन ले लें किसी भी शॉप से और वो वाकई रियल स्टोन हो और आपने उसको पहन लिया है, तो आप उसको अपनी अच्छाई के बजाय आप बुराई की तरफ चले जाएंगे, आप उसके नुकसान होना शुरू हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, आप समझेंगे मैंने शौक के तौर पर ये जैम स्टोन पहन लिया, लेकिन उसके नुकसान हैं। जैम स्टोन जो है पूरी दुनिया में इससे फायदे बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं, आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आज का जो हमारा स्टोन है वो अंबर है। अंबर एक स्टोन का नाम है और अंबर स्टोन ऐसा स्टोन है कि जो ये समझते हैं जिनको रात को खौफ आता है, दिन में भी खौफ आता है, जो बहुत बेचैनी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, जिनको हमेशा यूं लगता है जैसे पीछे कोई है, कोई आ गया, कोई गुजर जाएगा, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, जिनको यूं लगता है जैसे सामने कोई जिन गुजर गया, कोई ऐसी चीज सामने आ गई, ऐसे लोगों के लिए ये अंबर स्टोन है।
1: फिर तो मुझे भी पहनना चाहिए ना।
0: अंबर स्टोन उन लोगों के लिए भी है जिनका अबॉर्शन हो जाता खवातीन का, जो बार बार प्रॉब्लम में रहती हैं, जिसको अठारह कहा जाता है, अठारह की तकलीफ के लिए भी अंबर स्टोन बहुत काम करता है। लेकिन इसके डिफरेंट तरीके हैं। अगर अठारह की तकलीफ के लिए आप इसको पहनना चाह रहे हैं तो 21 कैरेट का सिवाच स्टोन का अंबर आपको पेट पर अपने बांधना है, जो कि बिल्कुल आपकी नाफ को टच करेगा।
1: सही है, ठीक है।
0: ये उन खवातीन के लिए जिनके अबॉर्शन बार बार हो जाता है, जिनको 18 की तकलीफ हो जाती है, औलाद नहीं हो पाती,
1: मिसकैरेज
0: हो जाता है, बार बार औलाद का प्रॉब्लम रहता है, उनको यकीनन ये 18 की प्रॉब्लम है और अंबर स्टोन उनके लिए 21 कैरेट का अंबर स्टोन बिल्कुल अपने बैली पे बांधना है और उसको पेट के साथ टच करता हुआ हो। तो ये स्टोन आप देखिएगा कि आपने इसको दिन के वक्त कोशिश करनी है कि गाय का प्योर दूध अगर मिल जाए तो फिर तो समझ लें कि 100+ ये काम हो गया। अगर गाय का आपको प्योर दूध मिल जाता है तो आप मिट्टी के प्याले में सारा दिन उस स्टोन को उसमें डिप किए रखेंगे,
1: ठीक है,
0: और रात के वक्त सोने से पहले स्टोन को उठाएंगे, धोना बिल्कुल नहीं है उसको, उसको गाय के दूध से ही निकालकर आपने उसको बिल्कुल अपनी बैली पे बांध लेना है 21 कैरेट का, मिस कैरेज खवातीन के लिए वो इसको बांध लें और सारा रात आपने जब सोए रहना है तो वो बंधा रहे, आप देखिएगा कि आपकी मिस कैरेज प्रॉब्लम खत्म हो जाए
1: और सुबह उठ के फिर उसको गाय के दूध में रख के रख दें,
0: सारा दिन गाय के दूध में पड़ा रहे,
1: ठीक है, और रात को आपने इसे पहन लें।
0: और ये ख्याल रखना है कि आपने इसको धूप नहीं लगने देनी,
1: ठीक है,
0: यानी ये स्टोन जो है बाहर ना निकले 21 कैरेट का अंबर स्टोन,
1: सही, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में,
0: तो उन खवातीन के लिए स्टोन, और ये आपको बिल्कुल सिवाच स्टोन से मिलेगा, बिल्कुल रियल स्टोन मिलेगा और आप 21 कैरेट से ना कम हो ना 1% ज्यादा हो। अंबर स्टोन में और भी बहुत सी खूबियां हैं कि अगर आप इसको गले में पहन लेते हैं तो आप जादू से बच जाते हैं, बहुत से शहर से बच जाते हैं, बहुत से हवाई बलायों से बच जाते हैं, हाथ में पहन लेते हैं तो कोई भी मखलूक जो है बैड इफेक्ट आपके करीब कोई आ नहीं सकती। इसको अगर आप पेंडेंट में पहनते हैं और अपने गले में पहनते हैं सारा दिन के लिए तो आपकी इज्जत में बहुत बुलंदी होगी, आप एक प्रेस्टीजियस पर्सनैलिटी बन जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत वकार होगा आपका, जो चाहते हैं कि उनको शोहरत मिले, फेमस हो जाएं। फेमस लोगों के लिए राइट लेफ्ट हैंड की जो बिग फिंगर है उसमें इनको 12 कैरेट का अंबर पहनना होगा। 12 कैरेट का अंबर पहन लेते हैं तो लेफ्ट हैंड की बिग फिंगर में तो आप बहुत ज्यादा फेमस होते चले जाएंगे, शोहरत की बुलंदियों को छूते चले जाएंगे, उस वक्त तक जब तक अंबर में कोई लाइन नहीं पड़ती। जब अंबर में लाइन पड़ जाएगी तो एकदम आप ऊपर से जमीन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो जो आपको सिवाच स्टोन से सदके बताए जाएंगे आपने फौरी तौर पर उन सदकों को रिपीट करना शुरू कर देना है। जब उनको रिपीट करते चले जाएंगे तो ये स्टोन अपनी लाइन से वापिस आ जाएगा। आपने जो सवाल किया कि लाइनें जो पड़ जाती हैं, तो अगर आप सिवाच स्टोन से लेते हैं अंबर तो 30 डेज का टाइम होता है, क्योंकि अंबर में बहुत जल्दी लाइन पड़ती है, अंबर में बहुत जल्दी सुराख हो जाते हैं, अंबर का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर सिवाच स्टोन से राबता कर लेते हैं, स्टोन ले लिए 30 डेज हो गए आपको, उसके अंदर आप राबता कर लेते हैं तो सिवाच स्टोन वाले आपका अंबर स्टोन एक्सचेंज कर देंगे विदाउट चार्जेस।
1: ओके, ठीक है।
0: किसी शॉप से आप कपड़ा लेकर जाए तो वो कपड़ा वापस करने तो वो बाहर गली में फेंक देंगे, सड़क पे गली
1: बिल्कुल ऐसे ही होता है।
0: तो चुपको तो भजो इतो। लेकिन ऐसा नहीं होता सिवाच स्टोन में, क्योंकि ये एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च होती है, इंग्लैंड में काम हो रहा है, पाकिस्तान में हम यहाँ पे सिवाच स्टोन पे काम कर रहे हैं, हम इससे बहुत से मामले हल कर रहे हैं,
1: बहुत बड़े सोशल वर्क भी है
0: जी बिल्कुल। ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है विदाउट मेडिसिन, इसमें मेडिसिन नहीं है, पूरी दुनिया में विदाउट मेडिसिन बहुत काम हो रहा है। हम पाकिस्तान में जैम स्टोन के जरिए विदाउट मेडिसिन काम कर रहे हैं और बहुत सी डिजीज पे हम काम कर रहे हैं।
1: अभी जो नजरें बंद हम हवाई मखलूक की बात करेंगे, डॉक्टरों के पास इलाज तो नहीं है,
0: लेकिन डॉक्टर मानते भी नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं। अब साइकेट्रिस्ट जो है उनको मेडिसिन भी लगा देते हैं, हर एक फील्ड अपना अपना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो जैम स्टोन फील्ड है आप इसको आजमा के देखें।

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: Carole.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम के मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOS को जल्द पहचाने, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाए। जुमेरात 3 सितंबर, दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
3: शौकत खानम कराची की तकनीक।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
1: आसान जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज जुहर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशाद बारी ताला है, कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी मिसाल ऐसे हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ रफीक हो जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा बरदार बने। सूरह अनाम।
1: FM 100।

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। रातों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम

0: बातों को पैगाम भेजें। मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, ब्राह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरखास्त को नजरअंदाज करें, इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें, सेटिंग्स अकाउंट टू स्टेप वेरिफिकेशन या एक 6 हिस्सों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें, ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है, अकाउंट तेजी से फाल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो, कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें, मुफ्त इंटरनेट इनाम सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें, ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें, सेटिंग्स लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें, अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
1: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
5: शौकत खानम कराची की तकनीक।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियाँ, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जहाँ होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहिरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम के मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा PMOS को जल्द पहचाने, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाए। जुमेरात 3 सितंबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
3: शौकत खानम कराची की तकनीक।
4: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: जानकारी लेता है। अगर तो आप अपने आप से सवाल करने में कामयाब हैं और खुद तलाश करने के, तो हो सकता है कि आप डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकते हैं।
1: That's wonderful. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा और आज बात हो रही है जी हॉर्मोन्स की दुनिया में PMOS को पहचाने यानी PMOS जिसका पुराना नाम PCOS था और इसको पहचाने और अपनी आने वाली नस्ल को मुस्तकबिल जो है उनका महफूज बनाए और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको के ताबुन से और प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात हो रही है। अभी तक के प्रोग्राम में हमने बात की है जी जिसमें PMOS सिर्फ आपकी यानी खवातीन की ओवरीज को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को वो कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इसमें जो है वो हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म का सिर क्या किरदार हो सकता है, ये जो PMOS है और वजन बढ़ने या कम करने की जो मुश्किल है इसके दरमियान क्या ताल्लुक है?
0: जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, अगर आपका अब कुछ कुदरती अवामल के तहत भी होता है, ज्यादातर जब थोड़ी सी खवातीन या लड़कियां फरबही माइल होती हैं, वेट ज्यादा होता है। अच्छा, एक और गलत फहमी हमारे जहन में कि अगर बजाहिर शख्स मोटा नहीं है तो उसको PCOS
1: नहीं होगा,
0: ऐसा नहीं है। एक बड़ा बारीक नुक्ता है।
1: अच्छा,
0: हमारे साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जीनियाती तौर पे, जेनेटिकली हम फैट पेट के आसपास जो अजा है, जिगर है, गुर्दे हैं, तिल्ली है, इनके आसपास जमा करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि, और वो जो हार्मफुल फैट है वो वही होती है। एक होती है जो जिल्द के नीचे होती है, वो अलग है, वो हर शख्स में दोनों तरह की होती है, लेकिन हम ज्यादा फैट पेट के अंदर जो आजा है उसके गिर जमा करते हैं। तो बजाहिर बंदा पतला ही लग रहा है या मामूली ओवर वेट है, उनको भी PMOS हो सकता है।
1: अच्छा,
0: और जो फरबही माइल है या मोटापे का शिकार है उनमें भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी है कि कोई शख्स ओवरवेट है और उसको PMOS नहीं है, ये भी हो सकता है, ये लाजिम और मलजूम नहीं है। तो अव्वल तो जो ये चीज है कि जब वजन ज्यादा है तो आपकी बॉडी उन आजा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाती है। जब इंसुलिन ज्यादा बनाती है तो उससे क्या होता है कि वो आपके जो बॉडी के मतलब जैसे हेयर फॉलिकल्स हैं उन पर असर अंदाज होती है, तो मर्दाना अंदाज से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कई दफा आपने नोट किया होगा गर्दन के आसपास गर्दन काली हो जाती है।
1: yes,
0: हम कहते हैं रगड़ रगड़ के साफ करें, उतारे, मैल जमा हो गई है। वो मैल नहीं है, उसको हमारी जुबान में कहते हैं, एक मुश्किल सा नाम है, एकेंथोसिस निग्रिकेंस। एकेंथोसिस का मतलब है जिल्द के अंदर कोई कमी बेशी है, निग्रिकेंस का मतलब ब्लैक। अगर आपकी जिल्द थोड़ी सी काली होना शुरू होगी बगल के अंदर या गर्दन के आसपास, तो ये एक अलामत हो सकती है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि PMOS की भी ड्राइवर है।
1: अच्छा,
0: उससे शुगर होने का चांस भी बढ़ता है,
1: डायबिटीज की भी,
0: और शुगर से पहली स्टेज प्री डायबिटीज का चांस भी बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला इतनी वाजे निशानियां देते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको ये चीज नजर आती है तो ये भी एक सोचने मजबूर कर सकती है कि आप क्या कर सकते हैं इस बारे में।
1: यस, बट प्रोफेसर साहब मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि हम देखना नहीं चाहते, हम देखें कैसे? सर हमें नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास शायद इस चीज का टाइम नहीं है कि हम अपने आप को देखें, हमने बस अपनी अपेयरेंस को खूबसूरत बनाना है या अपने स्टेटस को अपग्रेड करना है।
0: वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं आपको अभी यहां बताऊं, एक रेस्टोरेंट खुला है अंदरून शहर में है, मोहल्ला मुफ्ती बाकर में है, और वो का खाना बहुत अच्छा है। आप कैसे ढूंढेंगे उसके बारे में?
1: ये सर्च किया जाएगा। एग्जैक्ट,
0: फेसबुक पे आप लोग खड़े हैं ना, बैठे हुए हैं ना,
1: बिल्कुल
0: सर्च सुर्च कर लेते हैं ना,
1: कर लेते हैं,
0: इसके लिए भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मसला नॉलेज का भी नहीं है, स्किल्स का भी नहीं, एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। हमने हेल्थ आउटसोर्स कर दी हुई है। अब वो आउटसोर्स किस तरह की हमने? हमने कहा अल्लाह पे छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं करना। अगर डॉक्टर पर गया डॉक्टर ही बताएगा। तो हमें अपनी हेल्थ के बारे में ओन करना है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में हमने खुद कॉन्शियस होना है, ना कि मतलब हमने ये देखना है कि फलां ने ये काम किया। सर हमारे यहाँ ये वाला बहुत ज्यादा है कि किसी ने भी कोई चीज इस्तेमाल की होती है उसको उससे फायदा होता है तो वो आगे स्प्रेड करता है।

0: अच्छी बात है, बट जरूरी नहीं है कि वही चीज वही फॉर्मूला जो आपको सूट करे वो मुझे भी सूट करे।
1: जुड़वां भाइयों में, जुड़वां बहनों में एक इलाज कामयाब नहीं होता, नहीं तो होता। आप तो हमसाये के छोटे बेटे के फूफी के बेटे के इलाज को कॉपी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत जबरदस्त चेन बनाई है। बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है जी हॉर्मोन्स की दुनिया में, एंड वेरी लाइट वी टॉक्ड एंड वेरी एक्नॉलेजेबल टॉक्ड हो रही है हमारी आज के शो में। जो हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा हैं, बताती चली जाऊं, कंसल्टेंट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, विल केयर पाकिस्तान एंड पास्ट प्रेजिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। मौजू है जी पीएमओएस को पहचाने यानी पीसीओएस को पहचाने और आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाए। और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है एडको के ताबून से, एंडोक्राइन पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, एंड एडको प्रेजेंट्स दिस टॉक। और एफएम 100 से आप हमें सुन और देख रहे हैं फेसबुक पर। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं, अब वजन की भी बात हो गई, सारी चीजों की बात हो गई, अब हम डायबिटीज की तरफ आते हैं जरा, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है और पीएमओएस क्या कहता है, इसका क्या किरदार है, इसके साथ क्या मरीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस लाजमी होती है जिसमें पीएमएस हो।
1: इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके अब कई अवामल में से एक अवामल है, और अवामल भी इसके साथ साथ होते हैं। इसके जो असरात हैं बड़े दूरस हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो जाहिर है कि आपके पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ रहा है इंसुलिन बनाने के लिए। तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मुद्दत है कि जो ये पैंक्रियास की सेल्स की लाइफ है, एक टाइम के बाद कुछ प्री डिटरमिंड होता है, कुछ ज्यादा काम करने के बाद इस वक्त के साथ साथ पैंक्रियास जवाब दे देता है। तो उसमें पहली अलामत प्री डायबिटीज होती है और सेकेंड डायबिटीज होती है। एक चीज जो कि मैं हम बहुत भूल जाते हैं कि जिन खवातीन में आपको पीमॉस मिले और वो किसी तरह अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद भी पीमॉस अनट्रीटेड है तो उसके भी मुजर असर आते हैं, जिसमें से एक है जेस्टेशनल डायबिटीज। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होना, उसका चांस भी बढ़ जाता है अगर आपको पीमॉस है। फिर उस हमल के जाया होने का चांस बढ़ जाता है, मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। फिर एक और चीज है, उसको कहते हैं प्री एक्लेम्सिया, जो कि आप जिसके बायस प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। और एक और संगीन किस्म है जिसमें जान भी जा सकती है, जिसको एक्लेम्सिया कहा जाता है, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते। तो अगर पीमॉस है और उसका आपने खातर खा इलाज नहीं किया तो ना सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में बल्कि प्रेगनेंसी में भी नुकसान है। तो इसको आपने सोचना है कि ये आपका, और आप इमेजिन करें व्हाट हैपेंस बियॉन्ड प्रेगनेंसी। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज किसी खातून को ही है, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद कुछ लोगों में ये खत्म हो जाती है,
0: अच्छा।
1: लाइफ लॉन्ग पकी डायबिटीज का चांस बहुत हाई है, एक बात। नंबर टू, आपको अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो आपने प्रेगनेंसी के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है। अगर आपके पहले बच्चे हैं तो उनकी केयर भी मुतासर होगी। तो यहां की आपकी जो इफेक्ट है, एक मर्ज को ना पहचानना, उसका तशखीस ना करना या करवाना, उसका इलाज ना करना, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है ये, इसके असल असरहात आपकी जान पे हैं और आपकी नस्ल पे भी अगली।
0: मीन्स के जैसे कि आगे ही हमारा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है कि बांझपन जो है उसकी तरफ भी जा सकता है, जैसे कि आपने कहा कि वो डेंजरस होता है, मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, एक्लेम्सिया। और साथ ही साथ आपने कहा कि शुगर जो है वो हमल के दौरान होती है, तो सर इसमें जो बांझपन है क्या इसका भी इसके साथ ताल्लुक है?
1: जी, इसका ओवरीज पे भी असर, जैसे बताया कि मैंने हम बात की है कि बाकी ऑर्गन्स पे भी कर रही, तो ओवरीज पे भी करती, तो उसके बायस कई दफा जिसको हम ये लफ्ज जो ओवरी है इसका उर्दू तर्जमा है बैजा दानी, तो बड़ा मुश्किल नाम है, कई लोग नहीं फेमिलियर होते इससे। तो इसके अंदर इसका एक काम है एग्स प्रोड्यूस करना, एग प्रोड्यूस करके वो आगे जाके फर्टिलाइज होके बेबी कंसीव होता है। तो जब पी मॉस है तो एनोविलेटरी मुराद ये कि साइकिल आए तो उसमें हो सकता है एग रिलीज ना हो, या साइकिल ना आए या कम आए, इस सब का चांस है। तो जब एग रिलीज नहीं होता तो जाहिर है वो बांझपन की तरफ जाता है. तो आप उस नुक्ता नजर को भी देखेंगे, फर्टिलिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड.
0: ओके, बहुत खूब जी, बहुत जबरदस्त. अच्छा सर, इस सारी चीज में जो हम एक चीज मुझे लग रहा है कि डिस्कस करनी चाहिए, क्या सर इसमें कहा जाता है कि खवातीन को स्ट्रेस के बहुत मसाइल होते हैं, यानी परेशानी, बहुत जल्दी वो हसास और सेंसिटिव है, तो क्या ये स्ट्रेस आना, इससे भी क्या ये साइकिल इरेगुलर होता है या पीएमओएस में इसका कोई किरदार है?
1: बिल्कुल ऐसा है. देखिए अगेन डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, आपने ब्लड टेस्ट करवाए जिन चीजों को आप चेक कर सकते हैं, फिर आपने सवाल किया आपके स्ट्रेस क्या है, किस तरह है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उस पे आप काम करते हैं. तो इट डज मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आप इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है. एक फिजिकल स्ट्रेस की एक फॉर्म है जिसके अंदर बच्चियां माशाल्लाह जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वजन कम करती हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, उनमें पीरियड्स रुक भी जाते हैं.
0: अच्छा.
1: तो वो इस बात की अलामत है कि आप एक्सट्रीम स्ट्रेस इफेक्ट करती है. तो स्ट्रेस का ताल्लुक है, लेकिन अगेन आप हर चीज को पहले जब तसल्ली कर लें कि वो नहीं है तो इस पे भी गौर करें और उसका भी फर्क होता है.
0: अच्छा अच्छा सर, चेहरे पर दाने, गैर जरूरी बालों का बढ़ना और सर के बालों का झड़ना, ये इन अलामात में एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या किरदार होता है?
1: इंसुलिन के बायस मेल हार्मोन्स की ओवरी से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. एक चीज बड़ी मजेदार कह लीजिए या मुनफरद कह लीजिए, मर्द हो तो उसमें बहुत मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, औरत हो तो उसमें बहुत मेल एंड फीमेल हार्मोन्स होते हैं. फर्क सिर्फ रेशो का होता है. मेल के अंदर 90% मेल हार्मोन, 10% फीमेल हार्मोन्स. फीमेल में 90% फीमेल हार्मोन, 10% मेल हार्मोन्स. कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जब रेशो डिस्टर्ब होती है, अगर फीमेल में अगर मेल हार्मोन्स की रेशियो ज्यादा हो जाएगी तो मुजर असरात नजर आने शुरू होते हैं. तो जब इंसुलिन ज्यादा बनती है जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बायस ओवरीज मेल हार्मोन्स बनाती हैं, जिसके बायस सारे आपको मर्दाना अलामात आती हैं.
0: यानी कि वो 10% जो है वो 90% के ऊपर हावी हो जाता है.
1: होना जरूरी नहीं 10 से, मिसाल 15% हो गया वो 85% रह गया. रेशो डिस्टर्ब होना जरूरी नहीं है कि वो उस लेवल पे चला जाए कि फीमेल हार्मोन विल स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड, मेल हार्मोन निस्पतन ज्यादा बनने जो और फीमेल हार्मोन रेशो कम हो जाती है.
0: बहुत खूब जी, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी. आज बात हो रही है हार्मोन्स की दुनिया में, पीएमओएस को जल्द पहचाने, आने वाली नस्ल का जो है वो मुस्तकबिल महफूज बनाए, और ये मेरे ख्याल में हमारे इस दौरे हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया भी है. पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको प्रेजेंट दिस प्रोग्राम एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी एडकोज का, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का, और फिर पाकिस्तान के FM 100 का रेडियो स्टेशन से लाइव आप लोग ये सुन भी रहे होते हैं, क्योंकि ले पर्सन जो हैं वो ऑलवेज रेडियो सुनते हैं. और फिर सबसे पहले जो है वो हम शुक्रिया अदा करते हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर अली जावा, जो कि कंसल्टेंट हैं, एंडोक्रेनोलॉजिस्ट हैं, विल केयर पाकिस्तान एंड इसके साथ पास्ट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एंडोक्रेन सोसाइटी का, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम एक नॉलेज हासिल कर रहे हैं और आने वाली नस्ल को इंशाल्लाह हम इससे जरूर बचा सकेंगे. ओके सर, ये बातें हमने कर ली कि जो खातून है उसको हमल ठहरने में पेश आ सकती है PMOS, यानी मुनासिब इलाज और मैनेजमेंट के बाद अक्सर खवातीन जो है वो कामयाब हमल हासिल कर सकती हैं.
1: बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई चीज भी ऐसा नहीं है, कोई डेथ सेंटेंस नहीं है पीमॉस.
0: अच्छा.
1: अगर प्रॉपर डायग्नोस होता है तो इलाज मयसर हैं, और उसके बाद खवातीन हामिला भी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी होते हैं और आगे भी प्रेगनेंसी होती हैं. बात सिर्फ इदराक करने की है और राइट ट्रीटमेंट की.
0: दैट्स वंडरफुल. फिर वही बात आ गई कि सबसे पहले आप उसको पहचानें, डायग्नोस करें और फिर आगे बढ़ें. सर हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत होता है कि डायग्नोस नहीं किया जाता, और बहुत सी ऐसी बच्चियां बेचारी और बहुत से रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं है, एंड दे आर फेसेस वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस. उन सबके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: एक फितरी बात है, बहसियत मरीज वी ऑलवेज थिंक ऑफ गुड केस सिनेरियो, कि कोई नहीं جلن ہو رہی ہے, کوئی نہیں کچھ کھا لیا ہوگا. ایک شخص ہے 60 سال کی عمر کا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی یہاں ہو رہے. جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا سب سے پہلے کہے گا یار ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے. تو آپ بحیثیت مریض اپنے آپ کے بارے میں ڈیفیکلٹ چیز سوچ ہی نہیں سکتے. سو کسی سے مشورہ کریں, مستند اینڈوکرینالوجسٹ سے رابطہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں.
0: اوکے سر, جانے کا ٹائم ہو گیا, ہمیں تو بالکل پتا نہیں چلا آپ کے ساتھ ٹاک کرتے ہوئے کہ کب ٹائم جو ہے نا پر لگا کے اڑ گیا. کیا اس کے لیے پی ایم او ایس جو ہے اس کی صرف الٹرا ساؤنڈ کافی ہے یا پھر ہارمونل ٹیسٹ, میٹابولک اسٹیٹمنٹ اور دیگر وجوہات کو بھی کیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے؟
1: الٹرا ساؤنڈ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے, کہ بہت سارے اور ٹیسٹ ہیں کہ جو کہ کرانے کی ضرورت ہو سکتی ہے, آپ کا ڈاکٹر بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. اس میں میل اور فیمیل ہارمونز ہیں, پرولیکٹین ہے, تھائرائڈ ہے. اس کے علاوہ آپ پری ڈائبیریز کے لیے اور ڈائبیریز کے لیے ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک کیس بائی کیس ہر مریض کے بارے میں اینڈوکرینالوجسٹ کو فیصلہ کرتا ہے.
0: سر, جاتے ہوئے آپ نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟
1: ان آرڈر ٹو پک پی ماس, زوم آؤٹ اینڈ لک ایٹ دا ہول پرسن.
0: بہت شکریہ جی. ہارمون ٹاک کی دنیا میں آج بات ہو رہی تھی پی ایم او ایس کو جلد پہچانے, یعنی کہ آنے والی نسل کا محفوظ مستقبل بنائیں. ایڈکو پریزنٹ دس پروگرام پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹ دس پروگرام اینڈوکرائن کا بہت شکریہ جی. ایڈکو کا بہت شکریہ. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اور ایڈکو کتابوں سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے تھے. پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, پاسٹ پریزیڈنٹ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ یہاں پر آئے اور یہاں پر بات کی. اور ایف ایم 100 کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں گھر کی خیال, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
8: سیواج سٹون, ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے
9: ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا.
8: اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
14: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
10: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: شوکت خانم. لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
12: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
13: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
4: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: 100.
1: भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया सबका वे, क्योंकि अब आ रहे

आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
2: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0: नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। 100.1 FM,
1: your location for maximum music.

0: FM
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: अजान फजर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज फजर का वक्त हो गया है।